0: पके पेड़ पर पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा
0: कपड़ा